0: स्टूडियो तानचेन
1: अहिले बिहानको 5 बज्यो।
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु का साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठ फेर पनि गरिन्छ। प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98160 95301।

0: फुकै खाए साह्रै मिठो पकाए त स्वाक्कै एक पाकेटले पेट भरिने के हो भन प्वाक्कै
1: यी यो हो बोनस चाउचाउ।